थमोयगी यवा सुमरौ लै वाखलगी मपाउसु इराई लाइदे खल्ली थमोयनादि लेंगदना लेपलगे खोंफमसे वाखलना अमुक खल्ली पीरगे थमोयसे जिनबालना फोंगमद्रबसु वाखलमादि थमोयगी निंगाय कनानाबु खामलुगनी मियामना थोइदोक हेंदोकना पामजना तारीबा इसैनी आइदि थमोय पीख्रे फिल्मगी टाइटल सोंग होमेन दिवाई मयेक्ता टोनी अहिबम सैरांग दुना अरबिनमदि पुष्पारानी अनीना इसैसिगी थवाई हापलरी लौबिरसी सीरियल नंबर 5।

नहरों की खोंजल थोरम ताबीर बसिंग बु आन मुक्त तराम नोक जरी खुरम जरी नसी की थोरम द थम जरी बहीरम वेद हेंगलपना पुरप सैथिंग सिंह दी मतो करम न सेक्सिनगनी हाई बहीरम सिद रेजिना थोक्सों क्लिनिकल डाइटिशियन ग उन्दुना वारी बताई साप उन्दुना वारी बताई सान जगदौरी पा डेबेक्टो अक्विजम

0: Hi, Tomba.
1: Ichi.
0: Nangi 50% discount piba resto Pokemon pack to. Loiri hai ne karmai tori no.
1: Loidi. Kadai de gino da. Aduga ichi ne 50% hai do. 50% khatna te 50 to 60% ni offer piri se. Aduga stock to leitra ga sune. Haujik adumak book tok silaga discount adumak te adum piba gi khudong cha ba sulai bani.
0: Hai bidi
1: ne. Kana gumba mana ma cha gi luhong ba gi on pot oin hapsening ba. Luhong ga dabadi matam khara wa liba. Natraga yung gi darkar oiba do. Haujimak book tok silaga di tha khara gi तुम दो ऐसे सिल्वर जुबली की ऑफर ओइना अच्छा ऊपर डिस्काउंट पीली बसी के लोने ना अधुमक फंगे तो इन्हें है बा
0: अधुदी इन्हें की मचानु पीगे लोगों बगे है बे दो रेस्टो पोकेमोन पार्क सीधा है बनी हाउसिंग मार्क बुक तो उन्हें ना बा है बीरु रगे
1: होइसे रेस्टो पफ मैट्रेस मियाम ने है ना खंग पीरे हिप पद हक्चांग दे याम ना कंफर्टेबल ओइबा मोम पाक नी सिल्वर जुबली की ऑफर सिंग असी अदोम सु सोई दन लो भी हो नसी मक लेंशन भी रक्सी पेना स्टोर
2: मयाम ने ताबी निंदु ना खान भी रख पा इसे ही सिंगलां थोक दो ना ताहन जरी बसे मेगार शाम हम दस मिक मंगा गे एफएम सांगाई चैनल दस अंतुक चबा गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोरम देगी ने हंदक पंजरी बा मैसेज असीना नावरे मखा लेकर देगी थोई भी अमदी श्रीनिवास कुमार मरुप अन्य सीने थाबी रख पनी खान भी रख ली पा इसे ऐसी दानों दंबा फर्मसी देगी ऐसे में इस नाम में देश रुमा जनवानी पुनः सक्मी नबा नशा लाई न सेरिंग बदुगा राहुल ब्लू ना सेरंग भी सही ने इसे ऐसी थंजिंग हेक ने हेक ना ताज़े गहरे दुना सुमखा ताबा एसएमएस की वारोल पीवी रही तबक चुना सुना आवाबंग है काउ थोक ना बगी दमकता इसे ऐसी खुदोल तम जगे मैं आप पुनः �

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुंगान तुंगान मकल मथिल की थरम के आदमना मैं घर शाम हम 10 मिनट मंगा गई एफ एम संगाई चैनल दगी लेप्तना ताबी रही अदमक लेप्तना ताबी हो हौजिक चैनल असगी मखा ताबा नुंगाइरब थोरम सिंह नानथोक पिनबगी दमक यूरेका यूरेम बमदा मु खुशी नजरी

0: मरुप चंचा कांता योरे इतना
1: योरे मरु वारु बया देखो आई नरांग ने लांग निगबने अदुबु कंपनी की मैनेजर दो दिल्ली देगी लाख तने ले रहा मोंग दे पीने ने बस ये सांग लोशन बदल लाख पंगा मोह दरा अदो नाइको हाउसिंग पो फिल्म मखा कम दोरी बा
0: मरुप याम लो पसंद सतरी फिल्म नंबर सिनुम इन्हीं हम ये सिद्ध लोए गने खले
1: अदु गरंजियत आई की बाबा दी दिल्ली दलाई है
0: हो
1: आई हाँ ती मफ़ा मस्जिद सोशल वाक तो बनी ना

0: chilomi sande ba makhai lu khawle ra ga hamna ba
1: a se a poti sande da ba mante yubi maya kwa maya ma su sumang da pai dun le re a pu da ba di ya ro ye hai yi se
0: phare phare phare pu da ba di nu ngai ro da ba ni na ne lo ina pu khra si e hai ne re ngai se ta da ma ma se mu sang e makut ka mel la kai no a so ma yo ma su pai ni ni a ma se akwe de pi na ba so ina wa ra ma ni
1: ngi se
0: ni ngoi nangang na sa horo ai asom de inega wari unta sarugi ke ko
1: oi se tama karina mo ko du bo
2: kanone kamen kitang helak pane ai bor khan gi kamen yam hauni ne
1: tada kamen so harongoni ye tada aduga bor khan gi manung da khwai de gi maming sat panupa di tada mahammad di hainare
2: hai ai burane director na habiri shibo
1: oi tada mane tada tasemuni tada mata masukui bese tada ga waris hana ba supang phang di da aduna tada ga sidi salam dai sida tada ga wari khara sanami ne
2: eko adu di ai kamen si sumang na thamu khe gero
1: na tina de tada sang sida dum thambio
2: o
1: ai adum logjegi tada ai na tada mahamat ki maram da kari gum ba khara khang ni tada
2: o
1: tada na ngang wei dingi degi inkhol lasi de lei dei hai bagi sorak pa madi khangle adu thoi do pa kupadi khangge ta da
2: director saheb
1: ta da
2: ha director na khangda bagum ai su khangde punna maga se ala na silam bale
1: ho
2: ai bu po pa imai pa mafam si de lei ramni mafam si gi lei hauda ai chaura khare hingli ba pun si ni na su bunom makan matai madu khaktani ai na khangi
1: sa adu ga ta da ini babu nisu mathan tangai mali yomasida
2: ha
1: mi yamne le mi suhai loina magi magi thabak sanak ri hai adu sao khrabe in kol lasida mahang ne yumburum bi oina le dibase yam thakani ngai ara pai khoi busu mahang ne luna sana tobi
2: ah na khoi di thambu tham khoda babu nina luna sana tawdo ba mat leite
1: o
2: sao chek hauri ba u pam bi sing hai le pum namak mahang na lu na tau da balaiti
1: ho
2: director saheb
1: tada
2: babu ni di phidam ni ngai oirabi mai tei nu pi ni ne
1: atu tada wa ma ta hisaki
2: hayu ne hayu
1: na naung na asum khat ja bagi wani ko tada gi sahi su yam na li banati yum pan ba yari
2: mahamat ki pun si da ngasi phau pa da kana su waro ba le ki de director saheb
1: tada
2: mai waro de pom na mak ala da sin na khara ba ne कथों खरब ने कथों पकिश नुआई बले
1: ओ
2: उसे पाव बदी अलाने इबु चंबीरे अक्षांग दा अशोयंगा अम्मत यहुंद्रे नाव ये पतावुद्रे मशीनी माह की दुआ
1: अधुगत आधा ऐ कोई मरी पुड़ती लारी तंपम्सं याम न लाई अधुगत आधा लाई ये पकी तंपम पाव बा मरांग काई न लेगत आधा
2: लाई ये पकी तंपम
1: होई
2: है मधुदी याम पहिन है ऐ शु लाई खर खर ये इन है
1: ए तादा लाई ये पदी यान पहिना करी करी ये पगे तादा
2: डायरेक्टर साहेब करीशु थोई दो पदी ये ते दा नुंग अपाक पम गे मतकता सक्तम मम दी ये ली आइना
1: ओ
2: नुंग ना नुंग दी एक सक्तम ने आइना नो म नो म गे सक्तम मसे हाप चिल्ले अदुगा नमित चुप ये तो न ले बगे मतम सु फंगते अदुबो आइना खल्ले सक्तम मसे नो म नो म गे मपुंग पारे हाइन लायक पहाइबसी यामने नुंगाई खरब कलामने मशीन इंगोंदा अवाब अमत्त सुपीते
1: ओ
2: थोइने हेन दुम नुंगाई हल्ले सक्तम सिना इंगोंदा वहांग अमत्त हंगते अदुबो करियुम मतमदा अइन हंग बतार बशु पाखुम अमत्त पीते अदुबो दे अयक प सक्तम नीदना
1: ए तादा अदु दी कनागिस छक्तम नो ननाउद अमुत तकपि नुंग ने नुंग दिए प सक्तम दो ऐसु याम ने खंग नि दादा
2: सक्तम दि अमगी हेतु ओइ बयाय अदुबो मि ओइ बगी सक्तम ने डायरेक्टर मि खुदि मक्ता फजबले अदुबो आइगी फजबदि याम तोंगाले
1: अदुबो दि ऐसु खंग नि दादा लाई एक पसिंगी वकल से याम ने नुंगाई खपोनि दादा
2: डायरेक्टर लोन थोक तबा अयेक प सक्तम सिंगल लुइना बबु करम न नुंगाई गनि होय नंग हाय बदु बदि चुमे नुंगाई बदि मरक मरक तिस पावे अदुबु अयगे द मुक्तदि अवाबन नम
1: ओ
2: करियु ममतम द नुंग न नुंग दे एक प सक्तम मसी मांखि गद्रा ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ
1: ꯍꯣ
2: ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯍꯩꯃꯥ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒꯦꯀꯣ
1: ꯐꯅꯤ
2: ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯂꯦ
1: ꯐꯅꯤ ꯇꯥꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯅ ꯅꯨꯡꯗꯤꯌꯦ ꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯏꯅꯦ ꯕꯥꯕꯨꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯇꯥ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯅꯦ ꯕꯥꯕꯨꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯁꯦ
0: ꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯇꯥꯗ ꯃꯍꯥꯃꯛꯀꯤ ꯂꯃꯟ ꯂꯃꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯏꯅꯦ
3: ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅꯅꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯇꯩꯗ ꯆꯠꯂꯨꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯎ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤꯌꯥ
0: ꯏꯅꯦ
3: ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯨ
0: ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯏꯅꯦ ꯍꯤ ꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
3: ꯑꯣ ꯍꯤ ꯉꯥꯏꯕ
0: ꯑꯧ ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯕꯣꯔꯈꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒꯦ
3: ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯆꯠꯂꯣꯅꯦ

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी

0: जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: मैडम,
0: गुड आफ्टरनून
1: गुड
0: कनाई बिरो
1: आफ्टरनून।
0: बनो।
1: मैडम
0: होय होय, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम दा तराम नोक चरी करी वफम फुंगतो पिगनी हाय बियो।
1: मैडम नु खादु याम सारे अदुगा मैडम मई जी उरुम दे ओन नु आइ जरो मनी अदु के मति नो गे सारे।
0: होय
1: मतम कोई न तारु द्रबा प्रोग्राम जे नौ नम हापिर बजे याम नुंगाय ब फुंगतो तरी दा।
0: ꯍꯣꯏ, ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯥꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ?
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯀꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯖꯔꯒ ꯄꯣꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ।
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯨ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ।
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯏꯁꯩ ꯃꯃꯨꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ।
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ, ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯖꯜꯂꯛꯄꯅꯤ,
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕꯅꯤ।
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯐꯔꯦ, ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ,
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. हेलो,
0: गुड आफ्टरनून कनाओ बिरा बनो मिंगले फॉर्म खंग जगे. हेलो ताबिब्रा
1: ताज़ा इजाज़त नहीं मैं मैं खुराई देगी रोमावती नहीं मैम.
0: होय होय रोमावती बुतराम नोकचरी रोमावती ऐसी दिक्कत हुआ फॉर्म पुकार पिकनी है बियो.
1: निक्सी जरा वो मैं मुझे कंजन जेता अब पंगरो इधर ना दुक्की मत थवाई जे निक लाऊं याल चिन निक साथी जरो बने दो वो ताब जे मुख ना पंजरे सिद्ध ये ना नुआई जब अमुक लाई जे दरे मैं
0: याम नुआई जे कोई सोई कोई लिसनर में याम गा अमुक कहने वाली वाताई शाना बा फंग जब को वाफ़म पुकार पियो.
1: मैं दाम को ये कहीं याम ना सागल पो मतम जे वो रखनी ना फिर से अंगांग खंगे अहन खंगे कोई ये लोग थोंगा तो ये लोग खुरगा लोग खुलाई तो ना तो वा ठीक ही कहीं ना जे याम ना जोई ना इन थों को तो ये कहीं ना जे ठीक ही बाहर से कहीं ना थोक ले इबा तो कोई ले रख ले का ये लू ना ना ना थम गा दी जिले की कितना अंगांग थोक दर ना खंग जा बा जा कोई कोई की थोंगा ना पत्ता हाउसी पॉलिटिन अदे की मैं जी किसन किस लगा पैसे लगा थम दी बा हयी नो जू था मैं लाख मत दी मैम इसी मिन रोई चेन धरा अगर जेन से तुने ताच लग नि जेन से ओवर ओर गदी अखोई ने लाइरक सिद थब इंगांग से तो मतम द लाइरक सिद मत पे इसी ने मु से लग नि अदो अपुट अपुट पे लई म मफम सिंग जों रोई ने चेन धरा कनि देखो जी उजि छु था बन छागे में छासी द फत हाउसी पैसे लग थम बहाय से मधु दगी ओई दीबा अपुपम भारत मही मयाम मयाव बनि ने मखिन जी को जवंगम दबा अददगी संतोर पजिना खै ताइबो मुदे एपे तो अगदी मन याम लगो पुंसी जे हाउ सका मांगी बस संबंग बनति हजिनिंग बति नेदा अत हाउती जे याई के मखम ताजाना होगी उठोपीबा मामा की जगानी हाइदिन सु सो ताइद पैसा लग थम बजे येंगो द दुखि मत नुवाई जे दबा दुने नाना थम गदी आइ ईसा खि तगी सुनते मयाम पुन मकी लगाई अफबदो ओइनी
0: याम नुंगाई जे रोमावती सोमगी वाफम पुखत पिरकबा थागत बफोंग दुख चरी को मखाताने सेमुक तामिनसी
1: थागत चरी मेगा मयांग यंग जरगई थम जरगे को मेम
0: थागत चरी रोमावती

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून, का नाम बीरा बनो। मेमगी नाकता है रेडियो शेट से कितना नकने ले बीबा माले हेलो
1: फोनिंग प्रोग्राम द
0: हेलो
1: आई फोनिंग प्रोग्राम द
0: होय होय
1: अदो मरी छै से मरी मंगा कुंबा साब मतुंगा बताई से हैप्पी रहती है अब फदौने को छै खुदिंगी हैपनिंग ने आई से रंग से जितो मंगा तरुक लक्ष लेवा तो ए बताई से तो तो वनी ने छो लो लो कति रखते वा छै मरी मंगा साब मतुंगा
0: तंगाई फदब गाक्त ओइबनको सोमगिसु सोमन पुखतपिरैब वाकफमसिसु तरामन उचगे सोम सोम गुंबा कया लिसनर के आगे सु सोइदनबको अदुमा खोने जगे हाबो वाफमसि थमजगे ई नतबम
1: रतै दसु अदुम हापनि न इसै गिति दि इसै मगातर उसाव मतुंग वरहिस तो हापि रति पेन तोगो तांखन वाई ngarang से मरी मंगारक खंगे व देवताय से दुम तो वनि न
0: वखलोन पुखत्पिरक्पनिको लोइनना नई ताबिनिंग बल्फे मिसै हाइदना प्रोग्राम के आमसु थमजरी अदुदसु अदुमग लेप्तना सरुग याबियु हाइबा वाफमसि थमजगे
1: थैंक यू
0: यम नुंगाइजै इसै मखाताना तामिनासी।

शुक्रिया यूरेका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और सुनते हैं आज का गीतमाला कार्यक्रम आपकी रेडियो दोस्त थोकचुम गीता के संग आकाशवाणी फाल केंद्र के FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, क्यों ना आज सदाबहार गीत में चंद मस्ती भरे गीतों का आनंद लिया जाए, जिसे आप सुनकर गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज का पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महबूबा से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने, और ये गीत फिल्माया गया है हेमा मालिनी और राजेश खन्ना के पर।

से। इस गीत में आवाजें दी हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार है राजेश रोशन। ये गीत अपने मधुर संगीत और भावपूर्ण बोल के लिए जाना जाता है। ये एक रोमानी गीत है जो प्रेम और सुकून की तलाश को दर्शाता है। गाने के बोल हैं, क्या मौसम है ये दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाएं।

दोस्तों, अभी जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत है एक तन्हा और मासूम दिल की पुकार, जो पूरब की हवा यानी के पवन पुरवैया से दोस्ती करना चाहता है और उससे अपने मन की बातें साझा करना चाहता है। तो फिल्म है अनुराग, आवाज़ लता मंगेशकर ने दी है, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है एसडी बर्मन, और ये गीत फिल्माया गया है मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा पर।

दोस्तों अभी आपने सुना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म आंधी से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। इस गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। दोस्तों आपने इस वक्त अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का एफएम संगाई चैनल और आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म हीरा पन्ना से। राहुल देव बर्मन द्वारा रचित इस धुन में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों का जादू दर्शकों के दिल को छू लेता है। इसमें देवानंद का स्टाइल और जीनत आमन की मनमोहक मुस्कान ने इस गीत को पर्दे पर अमर बना दिया है और इस गीत के बोल को लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: दोस्तों सदाबहार गीत के आखिरी पायदान पर सुनते हैं बहुत ही प्यारी और शरारती नोकझोंक पर आधारित ये गीत है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज़ से अमर बना दिया है। फिल्म है दीवार, गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

दोस्तों इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मखल मथल की थरों कया संदोक तुने तहंजरी बासी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हाउसिंग अमुक ताबी रसी तोंगान तोंगान बा फिल्मी सही सिंह मथंग मथंग होना खुदोल के अहन बदल लौखचरी ममादो लेशाबीदो अंगाउबीदो हायरिब फिल्म असिदगी उमारजीत अमदी पुष्परानी अनिगी खोंजेलदा रोमी मैतेने सैरेंगबा सैरांगबना तोंब थांगजम

0: से 2000 आइत गी होबा क्लासिकल भेगेचर नेशन डांस फेस्टिवल से कुन ग तरे लग फाउबा द इसाब फंगदब से आइ पुन वखन सोंदबे वालेते हलमन मयाम सि ममांग द आइ लगे द काइन द वारो दे अदु आइ न तंबी गी बा सात्र बा न सारक बसिदा आइ बु मिराय रक बसिबु ओ मसिन सि फाइ कसु काइदे हाइज सस नोन जा हाइ बसि मदि पुनसि द आइ तौ रो हेबा आइ खन्दना आइ बु निंसि बिरा गा को बिरा पदो अदु खत पामि हाइन खान गी बदु नने आइ दि भेगेजन नेशन डांस फेस्टिवल से आज एन चाहि कुन दे कि म तुम साब से चाहि हुंफु सुरे बाइ से चाहि कुन कुन था मरी मंगा दि एतेन तरो पुदना आ चाहि हुंफु सुरम लाइ सान बाइ से आइ गि लक नने आइ गि लाइव से असिनानि
1: काइ मु ने साओ न तम तुइनि न खन्दोगा
0: खम खन गा दबनि ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯝ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯝꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯕꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯁꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯩ ꯅꯝꯇ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯅꯤꯔꯤꯅꯣ ꯑꯋꯥꯅ ꯇꯥꯅꯔꯛꯀꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2020 ꯗꯣꯕꯔꯂꯦꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯗꯣꯕꯔꯂꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯆꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯚꯥꯔꯥꯅꯥꯇ꯭ꯌꯝ ꯁꯥꯕꯤ ꯚꯖꯦꯟꯇꯤ ꯃꯂꯥꯅ ꯆꯍꯤ 90ꯗ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯤ ꯁꯥꯡꯉ ꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦ ꯃꯦꯜꯗ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯩ ꯑꯝꯇ ꯁꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥꯈꯛ ꯁꯥꯒꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯛꯇꯤ ꯈꯔꯈꯛ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯇꯤ ꯆꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗ ꯂꯥꯃꯈꯥꯏ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯛꯄ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ
1: ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ
0: ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯠꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯔꯦꯁꯥ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯞ ꯄꯤꯕ ꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯕꯕꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯗ
1: ꯍꯟꯗꯛ 2026
0: ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯥꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯠꯆꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯅ ꯀꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯈꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯗꯃꯁ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯜꯂꯦꯕ 2014 ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯍꯥꯋꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯤ ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯎꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ
0: ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒ꯭ꯔꯖꯥꯅꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯎ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ
1: ꯅꯍꯥꯗꯨꯅ
0: ꯅꯍꯥꯁꯤꯅ ꯈꯣꯠꯇ ꯈꯣꯠꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯔꯥ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯈꯔ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯎ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯎꯗꯦ ꯍꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯠꯂꯝꯃꯤ ꯁꯤꯡꯉꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪꯗꯪ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯁꯔ ꯗꯥꯟ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯔꯛꯇꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯈꯜꯂꯤ
1: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ
0: ꯖꯤꯁꯤ ꯇꯣꯝꯕ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯇꯨꯗꯗꯤ ꯎꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯚꯥꯕꯣꯛꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥꯕꯦꯜ ꯁꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯔꯨꯝꯍꯣꯜꯒꯤ ꯊꯦꯇꯔ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯊꯦꯇꯔ ꯃꯤꯔꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯦꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯌꯥꯟ ꯊꯦꯇꯔ ꯔꯨꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯗꯤ ꯌꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤꯅꯦ
1: ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ
0: ꯊꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯌꯦꯕ
1: ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯏ
0: ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯔ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯊꯣꯟꯕ ꯇꯧꯏ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯏ ꯀꯦꯁꯨ ꯀꯦꯗꯤ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯁꯦ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯃꯥꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯕꯤꯔ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯒꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯖꯦꯟꯁꯦꯀꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯁꯇꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯦꯛꯄꯤꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯦ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯉꯝꯅꯒꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅ ꯆꯦꯟꯖꯣꯡꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯖꯒꯣꯏꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯟꯇꯥ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦꯃ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯏꯍꯨꯟ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ
1: ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯟꯕꯗꯣ
0: ꯃꯤ ꯃꯥꯡꯉꯒꯦꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ

खुदुलगी अरुई बोइना ताबिरसी ताकेलंब मंदाकिनीगी खुंजिल्दा ngairangbum सरचंद्र ने सैरिंगब मतमिशेई।

मनकरी गुंबा मत हाय द्रग सु मरु पुंफग नवानी लो होंगनी हे ताब मी कुपतदा नंग नई की फम न सखी बुआ सख छिंग दो सिंबाल से न मकोन ओक तर बसु तमोई सी नदी कोक्षरो हाय करबने ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯝꯕꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯛꯈꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯋꯥꯁꯛꯀꯤ ꯂꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯆꯔꯣꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤꯅ ꯐꯝꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥ
பாதம் புனமுத்த மருணமாவோ மொமோன்னோ தம்பியுக்கோ ஐசலகே.

खांगंजबामा आकाशवाणी इम्फाल की म्यूजिक ऑडिशन की दमक ऑनलाइन की खुटांग फॉर्म थाजन बिखीबसिंग दा खांगंजरी मदुदी बी दगी बी हाई ग्रेड कानबगी ऑडिशन लागलीबा जून की तंग निपाल दगी हौजरगनी लागलीबा मे की तंग कुन मंगा दगी मे की कुन मापन फाउबगी मनुंग दा इंडियन म्यूजिक सेक्शन दगी अयुकी पुंग तरा माथोई दगी नुंथिल की पुंग मरी फाउबगी मनुंग दा एडमिट कार्ड लोबीरनबा निंशिंग जरी

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजी निमिदांगी पुंग तरेट मखाइ तारे मणिपुरी ता पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल आर के गोरानी ना पाउ पाजरी आहानबदा मरोइबा पाउ सिक्युरिटी फोर्स ना इम्फाल वे जिल्ला गी लमदिंग दे यामलाबा कुसुकुलाई फागतले फाजिन की नगा की मई तरुक अथु तेक कायदा थाद्रब राइज की तोान तोान फमसिंग वाकत खोंजों चंसीनरी राइज की तोान तोान जिला जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले थोरम पांथोखे हाने की प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेखीद की कुंथ्रा मंगा सूब पालन थोरम बोसी एंटी टेरोरीजम डे है पांथोनरी केन हेल्थ सर्विसेस की डिरेक्टर एवोला लेना नाब लेबाग लाप पेसेंजर अखन्नब सेसिल थोरों लखोत्नब एडवाइजरी थोखरे सिक्युरिटी फोर्स की लाख नोमई योन की थब इम्फाल वेस्ट जिला की लमसांग एरिया चथरी है पाव फंगद की मणिपुर पुलिस ने लमदिंग ऑपरेशन चथखरे ऑपरेशन अदुद लालोलुप कादर अनी खुलाई की कोनन फागत की हिरम से मरी लेने नंगा इम्फाल वेस्ट जिला की एस पी ऑफिस पांथोब पागे मिफम जिला एस पी खेत्री मयू शिव कांतन है मफम खुलाई दे लालों फानबगीदम चंसीब लालोलुप कादर से सिक्युरिटी फोर्स तम नोमे कापसी की सिक्युरिटी फोर्स ने हंद्र नोमे काप की तुंद नोमे काप अद चेनब कादर अनेब फागत की मखोना खुशु खुलाई योननबगीदम लापनी मसीद नतना ममांग सिक्युरिटी फोर्स लाख नोमई नोमी मरु योनबद हथेना चेने हाई मसान मराल जाजी थौक सिक्युरिटी फोर्स की कांगून लमदेंद लालोलुप केम थीब हूम की थब चथी तोान तोानब नोमी कुंथ्रा निपान यौन अतई लाद सिजनब खुशु खुलाई फागत की एस पी है
2: जगह सिक्युरिटी फोर्स योनगनी पावी मणिपुर पुलिस की टीम मफम स्पेशल ऑपरेशन ऑपरेशन मई फाय नकनी नई काब थोखी नई काप जाऊ फारे फाइव मई मरी योन लेप पाबी कादरनी
1: अमरोमद असम राइफल्स मणिपुर पुलिस बी डी टीम इ डी दो की अपनब कांगबूर तेनोपल जिला की टी बोंगमोल विलेज की बॉर्डर पिलर नंबर हमद्रा निथोद हमद्रा हमद चथकी ऑपरेशन एस एल आर राइफल मैगजीन याब 9mm पिस्टोल रेडियो सेट मरी आई डी मरी यौन अत पोलम क्या फागत की फागल आई डी सिक्युरिटी फोर्स नाम यौदन पोखाई फाजिन की नगा की मई तरु अथु तेक कायदा थादोरकदबनी राइज की तोान तोान फम खोंजों जंगसिन विष्णुपुर अकोब अपुनब लूफ कोकोमी विष्णुपुर बाजार रोमई नगा लुफुआम विष्णुपुर की मरा पाइबी ताइपे लोंग लेन की मियान वकत पिंफम फमी जॉइंट ट्राइब काउंसिल मणिपुर तमिलनाडु हेडक्वार्टर्स मियाम रैली चटी रैली मिनी स्टेडियम हौदन जदों पाव फाव चटी रैली फाजिन की नगा तरु अथुब थादोकदबनी है खोलाव लाखी फाजिन की नगा अथुब थादोकदबनी है तामई हेडक्वार्टर्स मियाम की रैली चटी इनपुई रोंगमई जेमी लियांगमई की अपुनब लूप होरीब जॉइंट ट्राइब काउंसिल मणिपुर की मियां मखाद लियांगमई सिविल ऑर्गनाइजेशन से चंसन की खोंजों जौजांग तेक्त नगा मिसम हाथ यानी फाजिन की नगा तेक्त कायदना थादोरकदबनी है खोलाव क्या लाखी खोंजंग अदुगे सरुक अमु ओइनंगासि डेपुटी कमिश्नर खुतांग दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा मेमोरेंडम अमसु पिसिनखि मेमोरेंडम अदुदा एनबा सेंट्रल सिक्युरिटी फोर्सिंग थम्बिनबा मि फाजिनुन थम्बिगि थावंग असि क्रिमिनल गो इबा थावंगनि अमदि मसिबो केंद्र सरकारना यानिंग दि हाइदुन सबसा वारोल म थोकदबनि अमसुंग फाजिनुन थामलु खरा थादोरखिबा अदुगिदमक मेडिकल एम रिलीफ कि तेंगमांग पिबियु हाइबिना सिंग बयाउरि ताबिरिब पावसि आकाशवाणी इम्फाल दगिनि सुरसानपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन

0: सिन्धुलंगा से जिला आसी के तोंगान तोंगान मफम तरुकता जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले थोरम पंगथोखरे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आईएससी कैंपेन की सरुक अम ओइना लेबाक सिनबो थोंग पंगथोखनरिब कैंपेन आसी मनुंग चनंगासी जिला आसी की लैसांग विलेज ट्विलाफाई विलेज दंपी विलेज संगाइकोट सब डिविजन अमदी स्वांगदोद पांगथोके थरम अदुदा सरकारने पिरिब तोंगान तोंगानबा चाको थरंगे स्कीम सिंग मेयाम द खंगन की अमदि मेयामगी वाकाचिंग ताबग लोइनना मदुगी वारुइसिन पुरखी फेरजो जिला द सु जिला आज के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंधुना जन भागीदारी कैंपेन मखा तान चथरी गसी सु जिला आज के दमदाय अमसुंग अनखासो विलेज सिंग द कैंपेन चथकी मदुदा उजारा कयासु थाकी बग लोइनना आधार मिंग जनबा मदि मसिगी सेमदो सादोपकी थाबक चथकी कैंपेन के सरुका मोइना फैसिलिटेशन काउंटर से हांगदोक्तने मियामदा का सर्टिफिकेट छानब सरकार की डॉक्यूमेंट सिंग यंथोकी मसीगा लोइनेना हेल्थ डिपार्टमेंट ना मेडिकल चेकअप अम पांगथोकी अमदि चीफ मिनिस्टर की हक्सेल तेंगबांग अमसु प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हेल्थ कार्ड सिंग साखी सेनापति जिला की ओइनसु गासी फाइबुंग कोलेनी कम्युनिटी हॉल द धरती आबा जनजातिया ग्राम उत्तरगस अभियान दासगुआ की मखाद जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले की मरी लेनना आईएससी कैंपेन में पांगथोखरे कैंपेन अदु सिलीबांग फाइबुंग डीडीओ एसडीओ की मेयंग मखाद पांगथोखपनी कैंपेन अदु के मनुंग चना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सिंह सोशल वेलफेयर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हेल्थ अमसुंग तोंगान तोंगान सरकार की लोइसंग सिंगदेगी लाक अखंग आई सिंगने मेयामदा फंगलिबा तोंगान तोंगान याइफ थोरांग सिंग मतांग द वांगांखी हाने की प्रधानमंत्री राजीव गांधी लिखित भी कुंथरा मंगा सुब पालन थरों मंगा सिलाई बाग असिना एंटी टेरोरिज्म डे है ना पंगथोक नरी राज्यपाल अजय कुमार भला ने सु टेरोरिज्म की थवंग द लिखित रबा मियो सिंह की मफम द इकाई कुम द उल्लेखली नेशनल एंटी टेरोरिज्म डे ने लाख पद एकोई पुम मंगना शांति अमत ओइबा मसुंग नुसी सानो पुरंग न पुन होने मिनर सैन मुख्यमंत्री युनाम खेमचा ना अपील तौरी वारो लमदा मुख्यमंत्री हाय मियोइब खुनाई द सावना सिनरगलिब टेरोरिज्म की थवंग सिंग बाय खोइना माइथिब पीगदबनी टेरोरिज्म की थवंग लेखिद्रब मई मफम इकाई खुम उल्ली इमुंग मनुंगी अवाब सरुक यारी है मुख्यमंत्री फोंदोकली गृहमंत्री गोविंदास कौंथौजमना नेशनल एंटी टेरोरिज्म डे मरी लेना है अखोई मेसल की मरक्त अपुन की वाखलोन हेना चेसिन हंदुना जाति की अपुन सकम की थौना फना चंसनर जाति अगर सेनबद लेखिद्रब सेक्यूरीटी पर्सनल मफम इकाई खुम उत्ली थौरम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने इम्फाल कांग्रेस भवन पांगथोकी असम राइफल्स ने सिंधुलंगा सुरासानपुर जिला की जालियन फाइव विलेज लिविंग वाटर हाई स्कूल द एंटी टेरोरिज्म डे पालन थोरम पांगथोकी थोरम मायरोई ओजा सिंह सरु याखी राज्य कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पी डब्ल्यू डी ओरिब वैकोम बिहारी ने हायरी राज्य अस डिफरेंटली एबल पर्सन सानोर अफब क्या पुथोप गमले मई मसिंग चाउन माई पाक गमले डिफरेंटली पर्सन एबल पर्सन की सरकार ने पाखली थौरानी फाउद माई पाक्त आकाशवाणी इम्फाल इपाव कंबू अखन उनब श्री बिहारी ने हाय हौजे फाउद डिफरेंटली एबल पर्सन अहम एम पी एस लोब परीक्षा माई पाक्तना एम सी एस अहम पुथोप गमख्रे नतना सान खोद चाउना माई पापी लम्बी चंसिली हाय
1: मणिपुर से सानव की पावर हाउस ने हायरगा कोई पर्सन सुई डिसेबिलिटी सिंगी प्लेयर सिंग ठोक ठोक तब कई की नहाय वो कोई मामा आपा सिंग लोसल्ला थंबी बा शुमा मैं आम सीना पर्सन सुई डिसेबिलिटी सिंगी स्पोर्ट्स में जे मशीन हटा रही अदु ना कोई की मणिपुर डा पोस्ट पॉलिसी है मा दरका वही शुमा मैं आम सी कोई मणिपुर की सरकार ना कोई जंक्शन भी बतरका वही हटकट सानी अखोई नॉर्थ ईस्ट की गुवाहाटी दू चपीनब प्लेयर थोरते अपील तौनी ममा मपा अखोई पेरेंट्स पुथोपीर मखोद स्पोर्ट्स की खुदचाब क्या लेर लाइक तब फाइव पर्सेंट जाबेसनी थबक फोर पर्सेंट
0: उखरु जिला स्कूल वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी पालन थोरम पाखोखरे नुमित असिगे मरी लेनेना महिरोसिंग अमदे स्टाफसिंगना मसा मसागि नाटकी फिजोलसिंग सेतुना स्कूलसिंग द चनकी पालनथरम असि यूएन जनरल असेंबली न हौकीबा लिसिंगन एनी द हौदोखिबनी पालनथरम असि कुमसि जैगि हिरमना डू वन थिंग फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हाइबसिनी राइजगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटना हाउ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मखाद लौगदौरिबा कंट्रेक्चुअल स्टाफसिंगि अयिब चांगयंग था असि कुनमिरिद पांगथोखलगनी मसीगा मरी लेनेना परीक्षा की सेंटर परीक्षा की मतम सेंटर अदु चथगदौरिबा तोंगान तोंगान पोस्ट की अकुप मरोल डिपार्टमेंट असि

0: ये स्कूल मोरंग खोम दे लेबा डिस्काई लाक एविएशन ना यामना अपिक पथागी फीस हुनबिदुना केबिन क्रू ओमदि ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग तोबिबा यारगनी सही तरह मंगा हेन एविएशन गि लमदा थबक तो विरम लब सिंगना चलाई जबा मणिपुर ये अमत तंगाय रब इंस्टीट्यूट नी माइरोय सिंगदा फ्री यूनिफॉर्म सु पिजगनी इंस्टीट्यूट असि दगि केबिन क्रू ओमदि ग्राउंड स्टाफ चा महेन पुथोक पुसु गमख्रे अकुप मरोल गि दमक 858297300 द कांटेक्ट तोबियु
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, Next Gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Nungairabi se kyan lechalo ituna semjariba sangai channel ki good evening manipur ni adomna tabiri ba se lebta na tabiyu nungai na tabiyu hauzika mugloka chari whatsapp message ama whatsapp message thabi rakli ba marup singh di namdulong dagi debeshwari ruta madi thoibi khanbi rakli be seina nungshi kaitel pharmacy dagi arbinamadi nimsefi muiwagi apunba konjelda Mangal Jabung Bumna, Sairing Bumadi, Tony Hei Bumna, Sairang Bai Saini. Kanbi Rakli Bai Sai Kudul Tamjari, Taminasi.

सबसे दूर सबसे पहले थोरम पांगथोक नखरे इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आईईसी कैंपेन के सरुक अमो ओइना लैबाक सिन बे थोंना पांगथोक नरीबा कैंपेन एस के मनुंग सानांगा सि चांदेल जिला दसु जनजातीय गारिमा उत्सव लिसिंगारि कुंतरुक पांगथोकी एसडीओ बीडीओ सखपि कारण सिनना पांगथोकी बा थोरम मधुदा जिला आसि कि तोंगान तोंगान बा विभाग तारे ने सरु याखी थोरम मधुदा सरकार ने पिरबे या फेत्रांग तोंगान तोंगान ने स्कीम सिंग अमदि सखो थोरांगी प्रोग्राम सिंग मतांग द मियाम द मयक सेंग न खंगन की पालन थोरम असि फेरजोल सुरसामपुर अमदि सेनापति जिला दसु पांगथोकी सिक्युरिटी फोर्स तक लाख नमय सिंह जोन की थबक इम्फाल वेस्ट जिला की लमसांग एरिया दा चथरी है पाव फंगबदगी मणिपुर पुलिस ने लमदेंग दा ऑपरेशन में चथकरे ऑपरेशन अदुदा लालहलोप अमे कादर अनि खुलाई कोने न फागत की हिरम असि गमई लेने नंगा से इम्फाल वेस्ट की एसपी ऑफिस ता पांगथो खिबा पावगी मिफम अमद जिला आस की एसपी खेत्री मेम शिवकांतन हाय मफम अदुदा खुलाई अमद लालहलोप सिंह फानबगी दमक संगसिलब मतमदा सिक्युरिटी फोर्स तन नोमे कापसि लखी सिक्युरिटी फोर्स छानदन नोमे काप की तुंग नोमे काप अदुदे चेनब अनि फागत की मखोन हाइदरोपगी मतुंग इना मखोय खुसु खुलाय सिंग अदु योनन बगिन ता लाखपनी मसिदा सुनतन ममांग द लाखिबा नोमे अमदि नोमे मरु सिंग जोन बदसु हक्थे नन चेने हाइना मसान मराल जाजखी थौदु असिगी तुंग द सिक्युरिटी फोर्स कांगबुन लमदेंग द लैबा लालहलोप अमगी केम द थिबो होमगी थबक सथकी मधुदा तोंगान तोंगान माखलि नोमे कोंथ्रा निपान जाउना अतै लान सिनब खुसु खुलाय सिंग फागत पंगम खि सेनापति जिला दंगसी आसाम राइफल्स के खुंजा सिंग उनदुना सिक्युरिटी गाक्स के मतांग दखने कि आसाम राइफल्स दगी थादुरपा पाउगी मतुंग इना राइज असिद तंगदु लेता बलाइन बगी पंदमदा अमदि सिक्युरिटी फोर्स सिंग मियाम गगी मरकता अफब मरि थमने बगी पंदमदा ngasi जिला आसिगे आइमोल तुखांग विलेज ता मियाम गी मिफम म पंगथुकी मिफम अदुदा राइज असिद हौजिक ओइरिबा फिबंग मतांग न कुमना खने कि बदन नतना फिबम असिद मियाम थोगलिबा खुदोंसा त बसिनि मतांग द सुखने कि मसीद सुनतन मैम आसाम राइफल्स की मार्केट अना लयंग की मतंग पीनबी मतंगदसु कुमना खनकी अमरोमदा राइजर्स की मनुंग हंजिन लेम फम सिंग दा हक्सेल गि लमदा कानम पीनबी पांदम दा आसाम राइफल्स न सिंदुना ngasi तेनोपल जिला की टी बोंगोल विलेज दा लेम न लयंग बि केम म पांगथोखरे केम दुदा कुंजा सिंग दा लेम लयंग कि बदन तना हिदा लांगथक सिंग सु लेम न येनथोखी नीट पेपर लीक केस कमई लेना सीबीआई ने डॉक्टर अम फारे आकाशवाणी पाउमी ने हाय डॉक्टर असि इमाकी मचानुपीदमक नीट परीक्षा की क्वेश्चन पेपर लेब गमई लेना चेनबदगी फाबनी निंगसिंग बयाय हौकी निमित खरे ने असिद सीबीआई ऑफिसियल सिंगना लातूर दा लेब डॉक्टर असि हॉस्पिटल चतुना थिजिन किब लेखरे मधुगी तुंगदा महाक पु वहांग पाउंग तौनबगीदमक पुनेद लांगनब खंगल लमकी वहांग पाउंग चतब मतमदा खुदम चानंग फंगबदगी महाक पु फाखिबनी केंद्रीय हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर ने एबोला लाइना नाव लेबागदी लापा पेसेंजर सिंह अखनब सेक्शन थरों खोटना एडवाइजरी थोखरे एडवाइजरी अदुगी मतुंग इना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो उगंदा साउथ सुदान चिंब लाइना असन सोनब लेबागदी लापा लाइहो कोक्सिपा मसल पेन ओबन चिंब लाइंग थेनब मोयसी खुदक मेडिकल की सेक्शन थरों खोटना खाहली लाइना असि नाब मोयसी हाथेना उनर पेसेंजर सिंह एयरपोर्ट की हेल्थ ऑफिसर नत्रगा हेल्थ डेस्क रिपोर्ट तौनब हाई उख्रुल जिला की यूथ एफेयर्स स्पोर्ट्स ऑफिसर ने सिंधुना चही असिगी प्री सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट मथंग अनीदगी हौरगनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंदुंग पांगथोकदब टूर्नामेंट असि जून मरी फाव चथगनी टूर्नामेंट असि चही तरह मंगा अमनी चही तरह तेरह मखागी सानरोयसिंग सरुक यागनी टीम अमदि सानरोयसिंग ऑनलाइन पोर्टल www.subrotocup.in द रजिस्टर तौनब खंगली मंगा सुब एम एन सी वुमेन्स सेनियर वन डे ट्रॉफी लिसिंग कुनमा कुंतरुक सानीबा लीग मैच पी टी आर सी पाछोना वाई पी एस यू सी ललाम बुरन हूद्रा माथोदा पी सी सी मई कोई ए एस यू वाखई पैलेस कंपाउंड बुरन चामग कुंथ्राद थोखरे पाउ लोजरी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आज मैं हूं आज आपके साथ आपका हमसफर शमीम खान। दोस्तों आज हम साथ निकल पड़े हैं उस दौर की सैर पर जबकि सुने नहीं बल्कि महसूस किए जाते थे, वो दौर जब रेडियो की आवाज पूरे घर का हिस्सा हुआ करती थी। शाम की चाय, बरामदे की ठंडी हवा और कहीं दूर बजता हुआ रेडियो पर एक मीठा सा गीत। जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसा कोई रेडियो हुआ करता था? जब सुबह गीत बजते थे तो पूरे घर का माहौल बदल जाता था। अगर हाँ तो समझ लीजिए आज की ये महफिल बिल्कुल आपके लिए है और उन सभी के लिए है जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं या अभी रेडियो सुन रहे हैं। तो चलिए यादों की इस रेलगाड़ी को रवाना करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ जो मोहब्बत की मासूमियत को बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ बयां कर रहा है। उस गीत को आवाज दी है इस उदास ने और फिल्म है स्वामी।

सच कहूं दोस्तों तो कुछ गीतों में एक अजीब सी जादूगरी होती है बरसों बाद भी सुनो तो वही एहसास वही धड़कन वापस लौट आती है जरा याद कीजिए उस गीत को कार्यक्रम का अगला गीत भी कुछ वैसा ही आपको महसूस करने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के

60 तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका हमसफर शमीम खान. दोस्तों, जिंदगी कभी मीठी, कभी शरारती, तो कभी थोड़ी सी भावुक, लेकिन एक बात तय है कि इसे खुलकर जीना चाहिए. तो आइए मुस्कुराइए जरा और गुनगुनाइए इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने.

वाह क्या कमाल की ऊर्जा थी इस गीत में। सुनते ही लगता है जैसे दिल कह रहा हो चलो भाई थोड़ा सा मुस्कुरा लिया जाए। दोस्तों जरा सोचिए अगर आपकी जिंदगी पर एक पुराना हिंदी गीत फिट बैठता हो तो वो कौन सा होगा। कभी फुर्सत में इस सवाल का जवाब खुद को जरूर दीजिएगा। बड़ा दिलचस्प एहसास होता है। और अब थोड़ा सा अपनापन। ये अगला गीत उन एहसासों का साथी है जिन्हें शब्दों में कहना थोड़ा सा आसान नहीं होता, लेकिन हमारे गीतकार ने उन्हें शब्दों में पिरोकर और संगीत से सजाकर हमारे सामने यूं पेश कर दिया है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, चाहे पास हों या दूर, दिल के बहुत करीब होते हैं। और जब उनकी याद आती है तो कोई गीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। तो चलिए यादों की उसी नरम धूप में चलते हैं और सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों कार्यक्रम हर सिंगार में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और समाचारों के उस पार कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हो जाएगा आपका ये दोस्त शमीम खान। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के

में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के

0: कि नहीं, हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त आपका हमसफर शमीम खान। तो चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से नगमे के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है शक्ति।

0: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग
2: कभी सुनहरी यादें कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़

0: नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 47 रन बनाए। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
1: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan yesterday said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security, and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the confirmation.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं, तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना।

मैं अपने आसमान के गिनूंगी, चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी, चलो फिर सुनते भी हैं। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं, तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान की गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो तारे गिनते हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कारवां, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कटी पतंग, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

शाम जब धीरे धीरे ढलती है तो सिर्फ सूरज नहीं जाता, हमारे भीतर की हलचल भी कहीं ना कहीं ठहरने लग जाती है। और इसी ठहरते हुए पल में हम महसूस करते हैं कि शायद हम खुद से बहुत दूर आ चुके हैं और अकेलापन हमें खलने लग जाता है। पर कभी सोचा है आपने कि वही अकेलापन होता है जो उस वक्त हमें खुद के करीब लाता है, खुद से मिलने का मौका देता है और यादें, रिश्ते, जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं सब एक एक करके सामने आने लग जाती हैं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे मन ने कोई पुराना संदूक खोल दिया हो और जिसमें से एक एक करके पुरानी चीजें पुरानी यादों के साथ बाहर आ रही हो। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

ये जो रात होती है ना, ये रात कभी अचानक नहीं आती, वो दिन की हथेलियों से फिसलकर उतरती चली जाती है, जैसे कोई अधूरी बात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और वैसे ही जीवन भी बिना कहे बिना समझे धीरे धीरे बदलता रहता है। और रात रात हमारे भीतर की हर उस राह से गुजरती है जिसे हम बरसों तक देख नहीं पाते। हर व्यक्ति के भीतर एक अलग आकाश होता है, एक अलग दुनिया होती है, और हर आकाश के अंदर कुछ अनकहे तारे होते हैं जिनसे हम बहुत बार बातें करना भूल जाते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मन मंदिर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said that the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has emphasized that productivity today extends beyond efficiency to include resilience, innovation, and inclusive growth. Addressing the inaugural session of 68th session of the governing body meeting of the Asian Productivity Organization in New Delhi yesterday, Mr. Goyal highlighted that India was honored to contribute during a transformative phase for the APO, where technology, sustainability, and changing global dynamics were reshaping economies. Highlighting countries' reforms under leadership of PM Modi, he noted initiatives such as Make in India, Startup India, Skill India, the production-linked incentive schemes, and PM Gati Shakti as examples of productivity-driven transformation, while reaffirming India's commitment to regional cooperation, sustainable development, and future-ready growth through the APO. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Kashmir. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC, has announced the launch of the upgraded Golden Chariot luxury train for the 2026-27 tourist season, introducing enhanced onboard amenities and promotional offers for travellers. In a statement, IRCTC said that the Golden Chariot, known for showcasing the rich cultural heritage and scenic landscapes of South India, returns in a refreshed form combining traditional elegance with modern comforts. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals after a 21-13-21-16 win over Malaysia's Go Jin Wei in the pre-quarterfinals in Kuala Lumpur yesterday. She will next face 8th seed Lene Hojmark Jarsfeldt of Denmark. India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today, and it will continue this week. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कल आज और कल, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रही हूँ।
1: मुझे भी आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

कहते हैं कि यादें कहीं जाती नहीं, वे बस अपना स्वर बदल देती हैं। कभी वे मुस्कुराहट बनकर आती हैं, तो कभी कभी हल्की सी चुभन साथ ले आती हैं। पर सच ये है कि ये यादें ही हैं जो हमें हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा बचाए रखती हैं।

जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ और जो भीतर कहीं ठहर गया वो हमें थोड़ा और गहरा कर गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है कुमार शानू और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है सलामी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, वो शब्दों से नहीं चलते हैं, उन्हें चलाने के लिए जरूरत होती है एहसास की। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां अपनापन अधिक होता है और वहीं रिश्ते एहसास के साथ सांस लेते हैं। ये जो रात होती है ना, ये हमें एक और बहुत गहरी बात सिखाती है। रात हमें सिखाती है कि किसी को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना जरूरी होता है। क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है, अगर वो दूर है तो भी करीब महसूस होता रहता है। और जो दिल से जुड़े लोग नहीं होते हैं, वो आपके कितने भी करीब हों, उनसे आपको दूरी महसूस होती है। रात सीखने, समझने और महसूस करने का मौका देती है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है आराधना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मुकेश की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, जब रात थका दे तुमको।

और नींद भी साथ ना दे, जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, मेरे पास चले आओ, बैठो और फिर बात करो, मेरे पास चले आओ, बैठो और फिर बात करो। जो आंख में ठहरी सी है, लफ्जों में ढलती ही नहीं, जो आंख में ठहरी सी है, लफ्जों में ढलती ही नहीं, उस खामोश सी हलचल को भी तुम मेरे साथ करो, तुम मेरे साथ करो। तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, सीधे सीधे बात करो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है संगम।

है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है झील के उस पार।

कभी आना, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की,

हर सुबह शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है अंदाज़।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद सुरभि होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस ठहरी हुई खामोशी भरी रात में, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। मैं हूं सुरभि आपके साथ। रात की अपनी एक अलग जबान होती है, कुछ अनकहे ख्वाब, कुछ आधी अधूरी बातें और कुछ ऐसे एहसास जो दिन की रोशनी में अक्सर छुप जाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत कभी शोर नहीं करती, वो तो चुपचाप दिल की गहराई में उतरती है, कभी किसी गीत की तरह तो कभी किसी की याद की तरह। तो चलिए किसी की यादों में उतरते हैं गीत सुनते हुए, उन सदाबहार नगमों रोमांटिक गीतों के सफर पर जो दिल को सुकून देंगे और मुस्कुराने की वजह भी देंगे। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और अपनापन भी है। फिल्म है ब्लैकमेल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और चलिए सुनते हैं अगला गाना, नाइट इन लंदन फिल्म से रफी साहब की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, एक ऐसा गीत जो बिना कम शब्दों के दिल की पूरी बात कह जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि पुराने दौर की मोहब्बत कितनी सलीकेदार हुआ करती थी, ना लंबी बातें ना दिखावा, बस एक नजर एक मुस्कान और दिल की बात इशारों में समझ ली जाती थी। जी हाँ, शायद मोहब्बत की सबसे प्यारी जुबान खामोशी ही होती है, जहाँ आंखें बोलती हैं और दिल सुनता है। अच्छा, इस गीत से जुड़ा एक और दिलचस्प वाक्या ये है कि ये गीत शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। ये गीत कश्मीर की बेहद खूबसूरत वादियों पर शूट किया गया। उस दौर में कश्मीर को हिंदी फिल्मों का स्वर्ग कहा जाता था और इस फिल्म ने उसकी खूबसूरती को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। फिल्म का संगीत ओपी नैयर द्वारा तैयार किया गया, जिसकी धुनें और उन धुनों में एक अलग ही चंचलता और नरमी महसूस

की जाती थी। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए इशारों इशारों में इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं, रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी बारिश, कभी चांदनी और कभी कोई गीत, प्यार की याद दिलाने के लिए इतना ही काफी होता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद इंतजार है, जहां हर छोटी चीज किसी की याद बन जाती है। और चलिए अब ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें अपनापन है, ठहराव है और बहुत सारी नरमी है। फिल्म है घर, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कितना सुंदर है वो एहसास जहां किसी के सपनों में अपना नाम मिलने लगे। मोहब्बत शायद वही है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलते नहीं बल्कि समझने लगते हैं। और चलिए चलते चलते सुनते हैं प्यार की मीठी धड़कनों जैसे इस गीत को।

गुम है किसी। और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच आठवां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस हार के साथ चेन्नई प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात की खामोशी में अब धीरे धीरे सुबह की हल्की हल्की रोशनी धीरे धीरे घुलने वाली है, घुलने लगी है। हवा में एक ठंडक है, एक ठहराव है, और इसी सुकून भरे पल में मैं हूँ सुरभि आपके साथ। जी हाँ, बातें करेंगे कुछ दिल की और कुछ गीत सुनाए जाएंगे, सुने जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। तो चलिए आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। फिल्म है मेरे जीवन साथी।

यार ये दिल चाहता है कि शोर ना हो, बस थोड़ी सी खामोशी रहे, थोड़ी सी हवा और कुछ पुरानी यादें, खूबसूरत एहसास और कुछ गीत बस दिल में रहें। और कभी कभी हम सबके

मन के भीतर एक ऐसा कोना होता है जो सिर्फ सुकून ढूंढता है, फुर्सत के पल ढूंढता है। तो चलिए हम और आप इसी फुर्सत के पल को ढूंढते हैं और सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी किसी की छोटी मोटी शरारतें अचानक जब याद आती हैं तो मन खुश हो जाता है। और अगर बात करें सुबह की तो ये सिर्फ खामोशी नहीं लाती बल्कि एक हल्की सी शरारत भी साथ लाती है। जैसे ठंडी हवा का यूं अचानक गालों को छू कर जाना या फिर किसी की पुरानी याद में उसका मुस्कुरा देना। काफ़ी कुछ ऐसा है जो यादों में बसा होता है। तो इसी मीठी मुस्कान के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है ऊंचे लोग।

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये सुबह हमें शायद यही याद दिलाने को आती है कि हर दिन नया दिन है और हर एक नई कोशिश भी आप हर नई सुबह के साथ कर सकते हैं, करते हैं। और अगर मन थोड़ा सा थका हुआ हो तो शायद ये गीत हमको और आपको एक छोटी सी हिम्मत जरूर दे जाता है।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का

गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। जीवन चलने का नाम है और ये विचार हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता असफलता, हंसी आंसू आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंसान को हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और अच्छे दिन हमें खुशियों का महत्व समझाते हैं। रास्तों में कितनी भी बाधाएं आए, उनसे घबराने की बजाय अगर हम सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन की इस यात्रा को एक नए अनुभव के साथ कुछ नया सिखाते हुए हम सकारात्मक सोच के साथ सच्चे अर्थों में जी सकते हैं।

जीवन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसमें संघर्ष, कठिनाइयाँ और अनेक परीक्षाएं आती हैं, लेकिन यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ने का साहस देती हैं। जब रास्ता मुश्किल लगने लगे तब हार मानने की बजाय अपने लक्ष्य पर विश्वास

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे